न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास रागुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित्त में उदम

साईं जत पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरु।

दशमी कभ्यो बाच बेंती चौपाई अमरी करो हाथ धै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब शरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा अमरे दुष्ट सबै तुम काबो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै कर।

अपना जान मुझे प्रत पर गया, चुन चुन शत्रु हमारे मर गया, देख तेग जग में दो चल, राखा मुहे और ना दला, तुम मम करो सदा प्रत पारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा, जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, तुम हो

कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब

मन वसै दुख संसार खोवे। गुर नव निध दरियाओ जन्म हम काल खतोवे। सो कहो टल गुर सेवीय।

अवर न कोई। बाणी निरंकार दा स्वरूप है। कई बार साडे मन च ख्याल आ जांदा है भी

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सब पाव काल कलेह तन माह मिटाव सिमरो जास विषम पर एक नाम जपते अघंते अनेक वेद प्राण सिमरत सौदाखियर किन्ने राम नाम एक आखियर किनका एक देह जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानक संग मोहे उदारो सुखमनी सुखे अमृत प्रभ नाम भगत ना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ नाम बसै

सिमरन दुखना संतापे। रब का सिमरन साध कै संग सर्वन दान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नव निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध।

गावे देह मार्ग इहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरुमुख परम गत पाइये छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिघन जहे आए सिंघारे हर का नाम तत्काले उधारे अनक ज्योन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हम बैला मल कभु न तो होवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जप हो मन रंग नानक पाईए साध कै संग जेह मार के गने जाहे न को सा हर का नाम हा संग तो सा जेह पैंडे महांद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जह पंथ तेरा को ना सिंजानु हर का नाम तह नाल पछानु जह महाप्यान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम उपर शाम जहां त्रिखा मन तुर अकरख है तह नानक हर हरे अमृत बरख है भक्त जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम द्रै जन कोट हर जस करत

कब पर न पंग हर का नाम जन की वड्याई हर के नाम जन सोभा पाई हर का नाम जन कप हुग जोग हर नाम जबत कह नाहि वियोग जन राता हर नाम सेवा नानक पूजय हर हर देव हर हर जन के मालिक दीना हर धन जन को प्रभु दीना हर हर जन के ओर स्थानी हर प्रताप जन अमर न जानी ओत पोजन हर रसरा ते सुन समाग नाम रसमा ते आठ पहर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुग्ध भव करे नानक जन संग के ते तरे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम संत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसे संत प्रताप दुर्त सब नसे संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल काठ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सरबट डोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान कर शास्त्र सिमरत बख्यान जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बो जतना पुन दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राति वर्तनेम करे बो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खन पृथ्वी फिर है चिर जीव है महा उदास पीसर थी वह अग्न माहे होमत प्राण कनक असव है वर पुहदान न्योली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे ताओ पी हाँ मैं मैल ना जावे हर के नाम समसार कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मान कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करे दिन सुवर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही कहो बहु साधना करे मन ते कब हुना भिखिया टरे जल तो वह बहु देह अनीत सुध कहा होए काची पीहित मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतद बहुमूच बहुत से आन बजाम का पहो ब्यापे अनक जतन कार त्रिसन नाम तरापे पेखे अनेक अगन नहीं बुझे कोड पाव दर गए नहीं सिजे शूर सनाई उपे आल मोह ब्यापे माया जाल वर करतूद सगली जम जाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुपाए चार

मिटा न पेखे सगल सृहित साजना सुख दुख जन समृतेता नानक पाप पुन नहीं ले पा नितन कौतन तेरो नाव निथावे कौ नाव तेरा था निमाने को प्रभु तेरो मान सगल कटा को देव दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मिद जान आपे अपन संगया प्रभ राते तुमरी उस तुम ते हो नान कबर न जान सकोय सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साथ संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मह उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी

मन पछतावे। जो दिसे सो चालन हार लभत रहो तहे अंधार मिटाऊ स्यो। जो लावे नेह ताक हाथ न आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई। मिथ्या तन धन कुटम सुभाया मिथ्या हम ममता माया मिथ्या राज जुबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या द्रोह मोह अभिमान मिथ्या शिव प्रकृत गुमान अस्त्र भक्त साधकी शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है।

मिथ्या मान पर लोभ लुभावे, मिथ्या तान नहीं पार विकार, मिथ्या भाव हृदय विकार, बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह, नानक हर हर नाम लय। वृथि सागत की आर जा साज बिना कह उवत सूचा, वृथा नाम बिना तने अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा विहाय, मेघ बिना जो खेती जाय, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम।

महान ब्रह्म ज्ञानी उते उचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सहजन पहे नान जिन प्रभयाम करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ ब्रह्म ज्ञानी तीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया

पे ही वृद्धावस्पति जब अकार्य हो कह न दृहते तब पापन तब कहते होता जब धारी अपन संसमाल तब बैर विरोध के संकमाल जब इसका वर्ण तिह न जाप तब रक्षो कहो किसे व्याप जब अपने आप आव पार ब्रह्म तब वो कहाँ किसो भत परम आपन खेले आप वृति जानक करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनि तब बंद मुक्त कहो किस कहो घणी जब एक है हरग में उपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सिपाह तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आपे आप अपनी जो तरह तब कम निडर कमन कद डरे अपन चलते आप करने हर नानक ठाकुर में उपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन मरण कव कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोये तब जम की त्रास कहो किस होय जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त केस पूछित लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन सुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही ऊपर जा

सुनै जोग जुगतन भेद, सुनै शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, सुनै सतसंतोख ज्ञान, सुनै अठसठ का इशनान, सुनै पड़ पड़ पावे मान, सुनै लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनै

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमो भक सार असंख मोन लिब लाए तार कुदरत गमन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख अलब ढत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ यार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुन गा अखरी लिखण बोलण बान अखरा सिर संजोग बखान।

आदे से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एक आवार कर कर वेखे सिरजनहार नानक

धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाट घड़िया रूप।

अजीत है, पीत है, त्रमान है, निदान है, त्रवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अजूज है, अचंज है, अमीक है, अर्भीक है, अथंध है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अलाव है, औजा है, अनंत है, महंत है, अली के अंदर शरी के अंदर लम्ब है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, पीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फ्रेक है, उजंग प्रयाद छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे अंदर संगी परमाते नमो पान भाने नमो मान भाने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समी अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ती विभूते कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी परमी अभोगी भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अभ्रे देव सुतर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संसनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्वनिवासी सदा सिद्धता बुद्धता वृद्धकर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओघर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अशेदी अभेदी अनामं अगामं समस्तो पराजी समस्तस्तां तामं तेरा जोर जाचरी शन जले है थले है पीत है अभे है प्रभु है अजू है देश है पेश है भुजंग प्रयाद छंद अगाधे अबाधे आनंदी सुरभे नमो सर्वाने नमो सर्वाने समस्त निधाने नमास्तवंग नृनाथे नमास्तवंग परमाथे नमास्तवंग अगंजे नमास्तवंग अपंजे नमास्तवंग अकाले नमास्तवंग अपाले नमो सर्वदेश नमो सर्वेश नमो राज राजे नमो साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वगृसं नमो सर्वरंगे द्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजय स्मस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदिदं निवासी चर्पण छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलह कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वं भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले उर्वाल छंद त्व प्रसाद आदरूपनाद मूर्त अजोन पुरखापार सर्मान धर्मान देव भेवाद उदार सर्पालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर ततर विराज हिवधूतरुभ्रसाल नाम ठामना जात जाग रूपरंग नारेख आद पुरुख उदार मूर्त अजोन आद असेक देश और नपे जाग रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख तामु न जाए सर्वान सर्वतर मांस दह मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक दे पे भरा जानी जवेद और कतेव रूप रंग ना जात पास हो जानी के जेब तात्मात्मा जात जागर जनमरण विहीन चकर बकर फिर चतुर चक मानी प्रतीन लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आदेव नाद मूर्थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व रचियो स्वयं गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरखा देश धर्म धाम सु परम रहता भूत लाखा भेस अंगरागरा रंग जाके जात बात नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुखदाय काम आप रूप अमीक अनुस्त एक प्रगवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजना दुर्भसूत अंगहीन अपंगनाथ में कुबुरख पार सर्वलायक सर्व गायक सर्व गोप्रत पार सर्वगंता सर्वंता सर्वते अनभेक सर्वशास्त्र ना जानी जय रूप रंग अरेख परमेद पुराण जाके नेत भाखत नेत कूट सीमृत पुराण शास्त्र न

अजाद है, चरपड़ शांत है तथा प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञात सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तरानं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्वा प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगा स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकामे त्रभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे। न पोत्रे न पुत्रे न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसाकं शरीक मितो अमीक सदैव प्रवाह है अजा है अजा है। भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है, हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज कर हिंद है करीमुल कमाल के सुन जमाल है के गरीबुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है रासुल फिकन है कलंक वरणास है समस्तुल निवास है अगंजुल करीम है रजाय करीम है समस्तुल जबा है के साहिब करा है के नरकंग प्रणास है बहसुल वास है के सरबुल गमन है महसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीस है अदेशुल लेख है मेसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो प्रसाह है के आत्म प्रवाह है के अचलंग अनंग है के मितो अभंग है मदभार शांत त्वा प्रसाद। मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड वर नर अमंड अनुभव नाश मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिशंड जल थल मन दिशंत अनुभव नाथ तुरास आ जान बाह एक सुदाह ओंकार आद कथनीय नाद कलखंड ख्याल गुरु बरकाल कर कर प्रणाम चित चर नाम अंश जगात अजना बाद अन चंजगात अन रंजबात अन टुट भंडार अन ठट अपार आठीठ सर्म अतठीठ कर्म अन मरण अनंत दाता महंतर बोल मना शांत त्व प्रसाद। करुणालय है अरकालय है कलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रितगे तरण है जाके कर्ण है बनमान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है प्रत्ये पर है करुणाकर है। आ जप जप थप थप कृता कृत अमृत मृत अमृत मृत करुणा कृत है आ कर्ता कृत तरणी तृत अमृतेश्वर है परमेश्वर है आ कर्ता कृत अमृत मृत है अजवा कृत अमृत अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बास है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद। नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग साध रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञान न भोज भोजे नमो पान पान नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपते कलंकार कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके भंगी स्वरूपे अनंगीय नामे त्रभंगी त्रकाले अनंगीय कामे। एक अश्री शांत अजाय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद। नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निर्गामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल करिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते अजाय गरीमे हरियंग करियंग करीमल रिहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग अंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे
சதா அங்க சங்கே பங்கங் பிபுதே. சத்நாம் ஸ்ரீ வாஹிகுரு சாஹிப் ஜி. ஏக் ஓங்கார் சத்குரு பிரசாத் பாஷை தஸ்மி துவா பிரசாத் ஸ்வையே சராபக சொத்த சமோசிதான்கே தேக் பிரயோக அர்ஜோக ஜதிகே சூர் சுரார்தன் சுத்த சுதாதிக் சந்த் சமோ அநேக மதிகே சாரிஹி தேஸ்கோ தேக ரயோ மாத கவுனா தேகித் பிராண பதிகே ஸ்ரீ பக ஸ்ரீ பகவான் கி பாய கிருபா ஹூந்தே ஏக ரத்தி பெர் ஏக் ரத்திகே மாதே மதங் ஜரேஜர் சங் அனுபூதங் சுரங் சுவாரே கோட் துரங் குரங் சே கூதத் பவுன் கே கவுன் க ஜாத் நிவாரே பாரி புஜான் கே பூப் லிபத் நியாப் சீசனா ஜாத் விசாரே ஏதே பய தோ கஹ பய புபதந்த கோ நாங்கே ஹி பாய பதாரே ஜீத் பிரய சப் தேஸ் சான் கோ பாஜத் டோல மிருதங் நங்காரே குஞ்சத் கூட கஜான் கே சுந்தர ஹிஸ்தி ராஜ ஹஜாரே பூத பவிக பவான் கே பூபத கவுன் கனே நே ஜாத் பிசாரே ஸ்ரீபத் ஸ்ரீ பகவான் பஜிபின் அந்த குவந்த கே தாம் சிதாரே தீர்த்த நாம் தயாத் மந்தான் சஞ்சம் நேம் அநேக வசிக்க வேத புராண கதேப குரான் ஜமீன் ஜமான் சபான் கே பிக்க பவுன் ஆஹார் ஜதி ஜத்தார் சபி சுபிச்சார் ஹஜார் கதேக்க ஸ்ரீ பகவான் பஜிபின் பூபத ஏக ரத்தீ பின் ஏக நலிக்க சுத சபாதுரந்த வாசு சாசனாதுரன் ஜான் தலங்கே பாரி குமான் பரே மனமே கர பரத் கர்பத் பங்க ஹலேனா ஹலங்கே தூர அரீன் மரூர் மவாசன மாதே மதங்கன் மான் மலங்கே ஸ்ரீபத் ஸ்ரீ பகவான் கிருபாபின் தியாக ஜஹான் நிதான் சலங்கே வீரபார் படே பரையார் பச்சாரே சார் கீ தார் பஷையா தூர் தே சம்லிந்த மவாசன மாதே ஜானகே மால் மலையா காடே கடான் கோ தோடன் ஹார் சோ பாத்தன் ஜக் சார் லவையா சாஹிப் ஸ்ரீ சாஹிப் ஸ்ரீ சப் கோ ஸ்ரீ நாயக் ஜாச்சக் அநேக் சுவேக் தவையா தானம் தேவ் நன் சாச்சர் பூத் பவிக் பவான் ஜபாயங்கே ஜீவ் ஜிதே ஜலமய தலமய பலஹி பலமய சப் தாப் தபாயங்கே புன் பிரதாபன் பாட் ஜாத்தன் பாப்பன் கே பவ புஞ்ச கபாயங்கே சாத் சும் பிரசன் சாத் சும் பிரசன் ஃபிரா ஜக் சத்ர சபை அவலோக் ஜபாயங்கே மானவ இந்திர ஜந்திர நிராத்ம ஜவந்த லோக் கோ ராஜ கராங்கே கோட் ஸ்நான் ஜாதக தான் அநேக் ஸ்வம்பர சாஜ் பராங்கே பிராமேஸ்வர பிசன் சச்சீவ அந்த சேஜம் ஃபாஸ் பராங்கே ஜே நார் ஸ்ரீபாத் கே பிரா சாஹிபாக தே நார் ஃபேர்னா தேஹ தராங்கே கஹா பயோ ஜோ தௌலோச்சன மூந்த கே பேட் பக்தியான் லகாயோ நாத் பிரியோலிய சா சமுந்திர லோகோ பிரலோக கவாயோ பாஸ் கியோ பியான் சோ பேட் கே ஐச ஐச சோ பேஸ் பித்தாயோ சாஜ் கஹூ சுன் லேஹோ சபேஜன் பிரேம் கியோ தினி பர பாயோ காஹுல பாஹன் பூஜ தரோ சர காஹுல லிங்கரே லட்காயோ காஹு லக்வர வாச்சி திஷா மே காஹு பஷா கோ சீச நிவாயோ கௌ புதான் காஹு பூஜத ஹ பாசோ கோ மிருதான் காஹு பூஜந்தாயோ கூர் கிரியா உர்ஜோ சப் ஹீ ஜக் ஸ்ரீ பகவான் கோ பேத ந பாயோ கௌ புதான் கோ பூஜத ஹ பாச கௌ மிருதான் காஹு பூஜந்தாயோ கூர் கிரியா உர்ஜோ சப் ஹீ ஜக் ஸ்ரீ

चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट स्वैत्म का बुआब हाद मोहे बचाबो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबाय करतारा। और चार्ज कर दय कर सबैरन को आसंग रहे, पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे ब्यासा। तुम्हें शाड कोई अबर न त्याऊं, जो बर जाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चमचम शत्रु हमारे मारी है। आप हाथ मुझे उभरे मरण काल का त्रासन भरे है। वो जो सदा हमारे पच्छा श्री सुजू करे ओ रक्षा, राख लियो मुझे राखण हारे, साहेब संसाय बिहारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तमोपुरी चतुर्दश कंता।

सब जगत बनायो, देव दैन दशन बजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तुसी को हमारी, सगल प्रजाजन आप सवारी, सेवकन को सेवकन सुख दियो, सतरन को बल मोहबत कियो।

अंड जेर सेत जकीनी उत्पज खान बहुरच दीनी कहूँ फूल राजा हव बैठा कहूँ सिमट भयो संकरे कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंब भया जुगाद स्वरूप स्वयं भव अपरक्षा मेरी तुम करो सिख उभार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जय स्तुचिता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हव मरे।

होसी गुणी अचार नहीं रंग राती आप गुण बह बह रोसी धन जोबन आक की छाया बिरध भये दिन पुन्या नानक नाम बिना दुहागण छोटी झूठ विशुन्या बुढ़ी घर कहलो गुर कै पाए चलो साचा नाम ते आए पावे सुख महलो हर नाम ते आए ता सुख पाए पेय डै दिन चारे निजगर जाए बह सच पाए अंदन नाल प्यारे विण भगती कर वास न होवी सुनिया हो लोग सबाए नानक सरसी ता पेर पाए राती साचा नाए पेर धन पावे ता पेर पावे नारी जियो रंग प्रीतम राती गुरकै शब्द सवारी जी रंग प्रीतम राती गुरकै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी नाहा प्यारी निम्र भगत करेई।

गुरु नानक देव साहब जी कहिंदे दुहागण जीव रूप इस्त्री वाहिगुरु दा नाम जपे तो बिना इस शरीर नूं छड के चली जांदी, बिछड़ जांदी है।

सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कन्हैया।

रास सोयना रास रूपा कामण रास परमल की वास रास कोड़े रास सेजा मंदर रास मीठा रास मास एदे रस शरीर के कह कट नाम निवास जित बोलिया पद पाइय सो बोलिया परवान।

सच सरा गुड़ बाहरा जिसे सच्चा नाओ सुने वे खाने जितरे हो तिन बलिहारा जाओ तामन खीवा जानिए जय मैं लिपाए थाओ नाओ नीर संग्या सर परमल तन वास तामक होवे उजला लख दाती कदात दुगत जप आखिए सुख जिसे ही पास सुकम रविसारिय जाके जी प्राण तिस विण साब पित्र जिता पहनन खाण होर गल्ला सब कूड़िया तुद पावे प्रवान श्री राग महला पहला जाल मूह कस मस्कर मत कागज कर सार पाओ कलम कर चित लिखारी गुर पुछ लिख विचार लिख नाम सलाह लिख।

0: बसदीन निर्भय पर जो भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी
1: नानक ओट पकरी
0: प्रभ स्वामी
1: गोड़ी महला पंजमा माज दुख पंजन
0: तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम आठ पहरा राधिय पूरन सतगुरु ज्ञान
1: रहा जित काट

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अनल अगम जैसे लहर में ओदत जल की

अनल अगमय जैसी लहर में ओधद जाल केवल जल माही मारवे। क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानिए हुए ना तैसा रहो। नरपत एक सिंहासन सोया

प्रगट शब्द है सुख दाता अनदिन नाम ते आवण आव अंतर जोत प्रगट पाप सारा।

0: न जाने त्रै गुण पढ़ै हर एक न जाने बिन बुझे दुख पावने
1: जात पावे आप मिलाए गुर शब्द दुख चुकाए नानक नामे की सच्ची वड्याई नमो मन सुख पावनिया माज मला तेजा निर्गुण सरगुण आपे सोई तत् पछाने सो पंडित होई आ तरे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावण्या हो वारी जवारी

वड़ताप। तिन मारे जे रख न कोय आगे पाछे मंदी सोए, अपने दास राख कंठ लाए। श्री नानक हर नाम ते आए। गौड़ी महला पंजवां।

पंजवा धोती खुल बिछाए हेठ है गर्द भगवांगू लाहे पेट बिनकर दूती मुक्त न पाई है मुक्त पदार्थ नाम त्याई है रहा हो पूजा तिल करत छनाना श्री काड़ ले वे हत दाना वेद पड़े मुख मिठी बाणी जिया कुत न संग प्राणी को नानक जैसे कृपा तार है हिरदा सुध ब्रह्म विचार है गोड़ी महल पंजवा तिर कृपा सुवार जन प्यार है सदगुरु तुमरे का सुवारे राव दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन के पैज रखी करतारे भाषा साह सब वास कर देने अमृत नाम मारस पीने निरप होए पज पकवान सा संगत मिलकी नो दान सरण परे प्रभ अंतर जामी नानक दास नानक गुरु।

भेड़ संग हर हर गुण गाय रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर सो सुरचे जे साध गमंता, हर संग्राते जम के नहीं त्रास, हर संग्राते पूर्ण आस, हर संग्राते दुख न लागै, हर संग्राता अंदर जागै, हर संग्राता हसै कर वसै, हर संग्राते भ्रम भव नसै, हर संग्राते मातूत मोहै, हर संग्राते निर्मल सोए, कहो नानक दिन को बोल जाए, जिन कहो प्राभ मेरा बिसरत नाही, गोड़ी माला पंजवा उदम करत शीतल मन पाए, मार्ग चल सकल दुख।

हर बेगुन को सिमरत मन में रास प्यास चितवत निरानी है कोई संत मिलाव निरा रहा सेवा गुरु दास दास तिन के इनक भांत तिस करो निहोरा तुल तार तुल सुख सगले बिन हर दर सबो ही थोरा।

अंतर लख न जाय लख आवेच पड़दा हो मैं पाई माया मय सब जग सोया ए परम कहो को जाई एका संगत एक ग्रह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त बेन पंच दहेले ओ बस्त गोचर ठाई जिस का ग्रह तिन दिया ताला गुंजी कुंजी गौर सो पाई अनुक पाव कर नहीं पावै बिन सतगुर शरण आई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंजना मैल मंगल गाया हर नानक भेद न पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सच भया भ्राम खिन मनाटा मिल ज्योति ज्योत मल समाई रहाओ दूजा गोड़ी माला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बेट ले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जात का देखो ताता तुम ही मोह विश्वास हो आयो कह पे गुरु अरदास बेनती जो सुन तो है रघुर आयो लह सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो हुणा सा सोई पन हो सी सुख दो कहाँ दिखायो खंड ब्रह्मांड गाय को ठाणा गुर परदा कोल दिखायो नौनिध नाम निधान एक उठाई तो बाहर कट जायो एक अनक अनक भात साजी ब प्रकार रचायो कहो नान परम गुरु खोई है इव तत् तत् मिलायो गौड़ी माला पंजवा औद कटे दिन सुना औद कट है दिन सुनना रे मन गुरमल का सवारे रहाओ करो बेनती सुनो मेरा मीता संत टहल की बेला यह खाड़ चलो हर लाहा गे बसं सुहेला यो संसार पुकार संसिम तेरे ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियाए हारा से अकत कदा दिन जानी जा को आए सुई बिहा जोहर गुरते मने बसेरा नहीं जो घर मेहर पाव सुसज बहर न होएगो फेरा अंतर जामी बिरख बिदात सरदा मन की पूरे नानक दास ही सुख मांग मुख कर संदन की चूरे गोड़ी महला पंजवा राग बिदा प्रभ मेरे मोहि निर्गुण साप गुण तेरे रहाओ पंज पगा दी एक गरीबा राखो रखनहारे खेत गुरु हर बहुत संताव आयो सन तुहारे कर हारे अनग पाती छोड़े कतु नाई एक बात सुनता की ओटा सा संग मट जाई कर कृपा संत मिले मोहे तिंद धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निरभ गुरगा शब्द कमाया जीत लो महाबिखा दे सचुअली बाणी कहो नानक मन पाया प्रकाशा पाया पद निरबाणी गोड़ी महला पंजवा ओ बनासी राया निरभ संगत मारे बसते यो डरन कहाँ ते आया रहा एक महल तो हे अपार एक महल निमानो एक महल तू आपे आप एक महल गरीबानो एक महल तो पंडित भगता एक महल खल होता एक महल तो साब गज ग्राह जे एक महल कछु न लेता काट के पुत्री का कर बपरी कलाम नारो जान जैसा बेग खराब है बाजीगर ओता सोई साजया ने अनगोडरी बहुत पात कर गया आप हर खुबारा जैसे महल रखते से रहना क्या करे बेचारा जिन किसकी सुई जाने जिन एह सब बेद साजी कहो नानक परम पर स्वामी की कीमत अपने काजी गोड़ी महला पंजवा छोट छोट रे बिखुआ गए रसुआ उर्जर रे बावर गए जो किरखे हरियायो पशुआ रहाओ जो जाने तू अपने काज सो संग चल तरे तसुआ नंगो आयो नाम सुदासी फिर और काल कर रसुआ

भानी ऐसा जोगी बड़भागी भेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक दे भग चट है गुड़ी महला पंजवा।

ऐसे दृष्ट ओह चंद चकोरी। राम संत में भेद किस नाही, एक जन कही मैं ला करोरी, जा कही प्रगट प्राप हो वा अंदन कीर्तन रस नर मोरी, तुम सम्राट अपार अति ऊचे सुख दाते हे प्रभान दोरी, नानक प्राप की जय के रपावन संतन का संग संगोरी। गोड़ी महला पंजवा, तुम हर से तीरा ते संत निभाहे ले हो मोह पुरक बिदाते ओढ़ पचाव दाते राव, तुमरा मर्म तुम ही जानिया तुम पुण्य पुरक बिदाते राखो शरण नाथ दीन को करो हमारी गाते, तरण सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते, कर कृपा जिसरा को संगे ते तो पार पराते, ईत उत प्राप तुम समरथा साहब के तुम रहात है, ऐसा निदान दे मोह को अर्जन चला तुम हमारा साथ है, निर्गुण अर्गु गुण कीजे हर नाम मेरा मन जाय पै, संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन सिर त्रापै। गोड़ी महला पंजवा, ससमय देव मुख सतगुर पै दयाल देव रहाओ, काट जे वरी कियो दास रो संतन टहलाओ, एक नाम को थियो पुजारी मुख अचर गुरेव दिखायो, पय प्रकाश सर्व जियार गुरु ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्त ज्ञान पर ठहरायो, मन आ गया सर्व सुख पाए दुख ठोक वायो, जो प्रसन्न पाए प्राप्त करो सब आनंद रूप दिखायो, ना कुछ अवध ना कुछ जावत सब खेल गयो हर रायो, को नानक अगम गम ठाकुर भगत भगत टेक हर नायो। गोड़ी महला पंजवा, हर ब्रह्म परमेश्वर मन ता कियो ओट गहे जारे, जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर तक नाम जपी जारे, राव मन की मत त्याग हर जान कंबू सुख पाइय रे, जो प्राप करे सोई पाल मान सुख दुख ओहि त्याग रे, कोट पतत उधार खेन में करते बार ना लाग रे, दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस पावे तिस नवाज रे, सब को मत पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर दें दे तोट नाही तुस करते पूर रहे नृत नागर रे, जजक जज नाम दे स्वामी कट कट अंतर सोई रे, नानक दास ताकि सुनाई जाते बिरता न कोई रे। रा गोड़ी पुर भी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबू न मनो विसार, इम सर्व सुखदात सगल कटा प्रत पारे, रहा ओम कष्ट कट कन पितर रस नाम चितार, सिद्ध सांत सुगर सरणी जलती अग्नि निवारे, गर्भकुंड नरक ते राख पगजल पार उतारे, चन कमल रात मन मह जामगी त्रास बिदारे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर उजाग मैं पारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर।

मन धन दरबे हर नाम नू सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नू रहाओ कल कल खंदिया हरिया गुर ज्ञान दीप कवजी आरिया बिख बिख्या पसरी अर अत कह नी उबरे जब जब हर गुनी मधुमार माया सोया गुर पेड़ भ्रांप खोया कुह नानक त्याया घाट कर नदरी आया कौड़ी महला पंजवा दिमान मारो तुही एक सेवा तारी गुरे टेक राव अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर लाया मारे पंच बखा दिया गुर कृपा ते दल साधिया बख्शिश वजो मिले कह नाम सुख सजानंद विश्राम प्रभु चाकर से पाले नानक ते मुखूजले कौड़ी महला पंजवा जिर उला नाम का ब्रज करन करावनु तिन में पाव है जाम कर हाव अब जद नहीं पाई है बड़े भाग हर त्याई है लाघ हिकमती जानी है आगे तल नहीं मानिया है अंग बंद करम कमावने गृहबल नीर बहावने प्रभु कृपाल कृपा कर है नाम नानक साधु संग मेला है गोड़ी महला पंजवा बार ने बलहार ने लाख बरिया नाम हु नाम साहिब को प्राण दरिया रहाव कर्ण ग्राम तू ही एक जे जिंदगी तू ही टेक राजम प्राप तू तनी तू निर्गुण तू सर गुण इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभु सुजान नानक तकिया तू ही ताण गौड़ी महला पंजवा हर हर हर रा दिया संत संग हर मन वस परम मोह पौसा दिया रहाओ वेद पुराण सिमरत पहने सब ऊच बिराजर जन सुने सगले स्थान पै पीत चीन राम सिंह पै रहत कीन लग चौरासी जोन फिर हे गोविंद लोक ने जन्म मरे गोविंद लोक ने जन्म मरे बल

का पाव गया। गोड़ी माला पंजवा जा को बिछरे राम नाम ताहु को पीर सा संग मेले हार रवे सगुणी गहीर राव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताक कर ताल नमन सिद्ध।

जद भोरै भ्रम तो भ्रम तो हारे अनक विधि कर टोरै को नानक कृपा पाई सत्संग मोरै गौड़ी महला पंजवा चिंता मन।

तब कहाँ कमावन पारिया, जब कुछ न होता, जब एक निरंजन निरंकार प्राप सब किस आपे करता, अपने कर्तव्य आप जाने जिन रचन रचाया को नान करण हरे आप सब परम चुकाया। गौड़ी माला महला पंजवा, हर बिना क्रिया वृत्ति जब संयम कर्म कमाण ए।

प्रसादी सो हर हर पाई जियो सब किस प्रभु का प्रभु किया जाई जियो प्रभु सब बल जाई जियो इन दान जप बड़ पागी जियो।

सब भाई कृपाल गुसाया नठे सुग संताप तत्ती भाव न लग गए सतगुर रख आप गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सृजनहार गुर तुटे साहब किश पाया जन नानक सत बलहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम राम मा जब पूर्ण होए काम रहाओ राम गोबिंद जपेंदया हुआ मुख पितर हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र।

तन मन फिका हो बन परमेश्वर जो करे फिर जीवन सोए अंचल कह के साथ गातरना संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परिवार

ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नावा साधो मन कमान त्यागो काम क्रोध संगर दुर्जन गीता एनस भाकुर रहाओ।

मूर्ताग भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूर्ता है बिसराव जन नानक कोटन में को उपज राम को पाव गौड़ी माला नामा साधो यो मान गह न जाय चंचल तृष्णा संग बस्त जद थिर न रहाई रहाओ कठिन क्रोध कड़ी के पितर जिस सब बिसराय रतन त्याग सब को हेर लीना तासो कस न बसाई जोगी जतन करत सब हारे गुनि रहे गुन गाय जन नानक हर पै दयाला तो सबद बिन आई तो सब बेद बन आई गुड़ी माला नाम साधु गोबिंद के गुण गावो मान जन्म मुलक पायो भ्रता काहे गवावो रहाव पत पनीत दीन बंद हर संताहे तुम आवो गज गुतरास।

रत्न जन्म बनुत हार्यो गोविंद गात नय जानी निम्न लीन पायो चरणन स्यो व्यर्था औद सरानी कहो नानक सो ही नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सकल जैक माया मोया निम पद नहीं पावे गुण मल नाम नर चित भवत डार रे दीन दयाल सकल पै पंजन सन तुम पार रे रहाओ वेद पुराण जास वेद पुराण जस गुण गावत तागो नाम ही मतार रे पाव नाम जगत में हार को सिम सिम कसमल सब हार रे मानस देह बहर न पावे कसु पाव मुक्त का कर रे नानक गद गाय कर नाम बहु सागर पार उतर रे रागोड़ी अस्पति माला।

नेत्र संतोख एकलिव तारा जिव सुचि हरस सार सच करणे अभ्यंतर सेवा मन तृप्तास्या लख पेवा जज देखूं तह तह साचा बिन बूझे जगरत जग काचा गुरु समझावै सोजे होई मनख मनमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु।